नमस्कार अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 9 सितंबर 2026, दिन बुधवार, भद्रपदा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्योदय होगा 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक किशोर कुमार। प्रस्तुत करेंगे RJ किडनी।

जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान असाधारण और मधुर आवाज वाले कलाकार पर आधारित है आज का प्रोग्राम सुनहरे पल। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। महान अभिनेता एवं गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर कुमार की तरह ही गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की चाह लिए किशोर कुमार 18 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके थे और वो चाहते थे किशोर कुमार भी अभिनेता बने, मगर किशोर कुमार को अदाकारी के बजाय प्लेबैक गायक बनने की चाह थी।

0: बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में सहगल की अंदाज में गाने का मौका मिला। फिल्म लड़की बतौर अभिनेता उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों दूर गगन की छाओ में, दूर का राही, चलती का नाम जिंदगी जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वह एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात थी कि वो महिला गायक की आवाज में भी गा सकते थे। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना

0: ओए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया,
2: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया,
2: ओ सवरिया।
3: किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में देकर अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। 1957 में आशा, 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1968 में पड़ोसन जैसे फिल्में दे दी। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वह अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वह अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उससे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वह कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वालों की बात ही न सुनते थे। लेकिन बाद में ये गाना 5 रुपए और 12 आना काफी हिट हुआ था।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है कि जब निर्माता निर्देशक H.S. रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे तभी किशोर कुमार ने उसके हाथ पर काट लिया।
1: हम थे, वो थी, हम थे।

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो

0: खेचा आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: बताया जाता है कि किशोर कुमार बहुत ही मूडी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार दोस्त से कहा कि देख, जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे तब मरेंगे।

0: किशोर कुमार की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना, जरा रुक जाना।

किशोर कुमार ने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गीत गाए। इन गीतों में हमें चले हो कहां करके जी बेकरार, बागम बाग, मन बावरा, निस दिन जाए, रागनी है दास्तान तेरी ये जिंदगी, शरारत और आदत है सबको सलाम करना और प्यार दीवाना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए गीत गाने के वास्ते महज 1 रुपया परिश्रमिक लिया करते थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था, तब वे स्टेज पर कार्यक्रम पेश करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। मुंबई में आयोजित एक ऐसे ही स्टेज कार्यक्रम के दौरान संगीतकार ओपी नायर ने जब उनका गाना सुना तो उनसे प्रभावित होकर कहा, महान प्रतिभाएं तो अक्सर जन्म लेती रहती है, लेकिन किशोर कुमार जैसा पार्श्व गायक हजार वर्ष में केवल एक ही बार जन्म लेता है। उनके इस कथन का उनके साथ बैठी पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी समर्थन किया।

वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वह अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए बहुत गाने गाए। इनकी मृत्यु पर राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी आवाज चली गई।

पे। किशोर कुमार जैसे सदाबहार कलाकार कभी विदाई नहीं लेते, कभी अलविदा नहीं कहते। वे अपने निस्वार्थ योगदान के कारण हमारे दिलों में जीवित हैं। वे चिरस्थायी और कालजयी है और उनके गीत थके हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना कभी नहीं छोड़ते।

0: है।
1: इसके साथ ही इस कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ और अगले अंक में किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक किशोर कुमार पर आधारित था। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोफोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश। तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर, रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सुनाता हूं आपको हर बार एक से बढ़कर एक नई लघु कथा जो आपके दिल में उतर जाती है। आज एक और नई लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और इस लघु कथा का शीर्षक है कर्मों के रईस। घर में माँ बेटी रहती थी। रात का समय था, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो देखा वहां तो कोई नहीं था, नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी उठाई और खोल कर पढ़ी तो हाथ कांपने लगे और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ, चिट्ठी में लिखा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे, तुम्हारी माँ से मिलूंगा, और नीचे ना नाम की जगह पर लिखा था भगवान। माँ ने कहा यह शायद हमारी गली के किसी छिछोरे लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए गंदी हरकत की है, शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सच लग रहा है। माँ को मना कर बेटी और दोनों खाने वाने की तैयारी में लग गई। उनका घर भले ही छोटा था लेकिन वो दिल से बहुत अमीर थे। घर में एक चटाई थी मेहमानों के लिए, निकाल कर बिछा दी। रसोई में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ अब दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि अगर सच में भगवान आ गए तो हम खाने में क्या देंगे उनको। उन्होंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। 300 रुपये उन्होंने बचाकर अपने पास रखे हुए थे, और दोनों, ठंड का मौसम था ना, बारिश भी हल्की हल्की से पड़ रही थी। 300 रुपये लेकर छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान की तरफ निकल पड़े। अब रास्ते में ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, दुकान पर पहुंचकर एक पैकेट दूध का लिया, एक मिठाई का डिब्बा लिया, और कुल मतलब 200 रुपये की चीजें खरीद कर वापस घर लौट आए। क्योंकि उन्हें लगा ज्यादा शायद भगवान घर पहुंच जाए, इसलिए ज्यादा देर हम बाहर ना रहें। बारिश भी शुरू हो गई तो जल्दी जल्दी वो घर आने लगे। देखा तो सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। एक ऑटो पास से गुजरा तो लड़की ने देखा उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था गोद में, जो रो रहा था। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, कोई ना कोई बात है जरूर। खैर, वो दोनों ऑटो से अपने घर पहुंचे। बेटी से रहा नहीं गया, बोली ऑटो वाले भैया जरा ऑटो को वापस लेके चलो। उनके पास वो जो रास्ते में खड़े थे ना, ऑटो वाला उनको वहां ले गया। वहां जाकर लड़की ने पूछा क्या बात है। बच्चे को बहुत तेज बुखार था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब देखो, एक तरफ तो भगवान घर पे आने वाले हैं और दूसरी तरफ ये एक और नई समस्या आ गई। बेटी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भगवान को तो मना लूंगी, हाल में छोड़ दी, इसलिए रख लो। बारिश हो रही है तो अपना छाता भी उनको दे दिया, बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी उतार के उनको दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंचे ये सोचकर कि भगवान आ गए होंगे तो ये ना कहें हम इतनी देर में पहुंचे वापिस। आकर घर पे देखते हैं तो एक और चिट्ठी आई हुई थी, पता नहीं किसकी चिट्ठी है। उठाकर बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पहले से दुबली हो गई हो लेकिन आज भी उतनी सुंदर हो, मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला, और हाँ छाता देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। अरे ये सुनते ही बेटी के तो होश उड़ गए, निशब्द होकर बाहर सड़क पर देखा तो वहां तो कोई था ही नहीं। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर तो मत ढूंढो, मैं तो कणकण में हूं। जहां सोच पवित्र हो ना, मैं उस मन में हूं। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं हर उस जरूरतमंद में हूं। बेटी रोने लगी और दोनों ही भावुक हो गए, पूरी रात सो नहीं पाए। तो आपसे एक प्रश्न है, क्या ये बेटी गरीब थी या ये अपने कर्मों से रईस थी? क्योंकि मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं, आदमी इंसान कर्म लेकर जाता है। और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला आदमी अच्छे कर्म लेकर जा रहा। इसलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर बने।

क्या ना बने, अपने कर्मों से जरूर अमीर बने। कभी आपने ऐसा प्रयास किया है? अगर नहीं किया ना, अब करके देखिए। आपको नहीं, आपकी अंतरात्मा तक बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, और जिसको आप ढूंढते हैं शांति आप अपने आप मिल जाएगी। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

उस गांव की गलियों से जब जब तू गुजरा होगा, चांद भी आसमां से तुम्हें देखने को उतरा होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जहां जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जहां जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा।

दास्तार गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने।

दर्द मचा गया कहर, बहुत अजाब था इंतजारी सहर। हम ही बेहोश थे वरना रक्स करते थे सामने साकर, कदम कदम पे साथ ही आखिर। जिंदगी पिला गई जहर, तुम्हें पाना कोई बात नहीं, क्या करें रूठी है मुकद्दर।

सामीन बहारे गजल आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नवाजिश।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: है दिल।
1: सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

0: हो गए हम।
1: प्यार का एक सुरीला नगमा है जिंदगी, सांसों की रफ्तार कहती है जी लो इसे, कल ये समा हो ना हो।

खुशबू तेरी मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस को बहुत देर लगती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आती है।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

दिल में एक तूफान सा उठ गया, उसने मुस्कुरा के देख लिया, वो हुस्न मुद्दसम कातिलाना खूबसूरत है। मैंने जो उसे देखा, सारी बजम ने उसे देखा।

दिल दे के जान लेने वालों पे नादान जमाना हंसता है, दिल की बस्ती का लुटेरा तो तेरे ही मन में बसता है।

0: थी।
1: मोहब्बत की सल्तनत पर राज हमारा आधा आधा है, कभी न छूटेगा साथ यही वादा है। और इसी वादे के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

मिली जुली गीतों की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। कहीं उम्मीदों का चिराग बुझ गया, तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।

सूरज की मानंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे हर हाल में, लेकिन बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े, रिश्ते नाते, हुस्न वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना।

तन्हाई में पुकारा किसने, इस लम्हे को संवारा किसने, दिल में लहर उठी है कोई, मुझको अभी पुकारा किसने, सब कुछ डूब गया साहिल पर, ऐसे किया किनारा किसने, मिलने लगा है इसमें सुकून, अब दर्द बनाया चारा किसने, बेहोशी के इस आलम से मुझको आज उभारा किसने।

धीरे धीरे खो जाती है अंधेरे के आगोश में। टिमटिमाते तारे आसमां में बिखराते हैं नजारे, चांद लगता है ऐसे जैसे बेकरार हो किसी की याद में। शाम ढलती हुई पर्वतों के पेड़ों पर मानो कुछ पल के लिए ठहर जाती है और सुरमई उजालों में चमपई अंधेरा एहसास दिलाता है दिलबर का, जो उससे मिलकर लौटी है अभी।

के समंदर में हंसी लम्हे तलाशते कई बार गुजर जाती है तमाम जिंदगी, मगर वो खलिश, वो चुभन, वो प्यार का मीठा सा एहसास नहीं मिलता। और यूं ही जिंदगी गुजर जाती है बिना

जो बसता है हम सभी की धड़कनों में, महसूस होता है सांसों में और आता है नजर चेहरे पे। आज भी ठहरे सागर में लहरों के कारवां बेताब है रक्स करने को, आज भी आईने दिल पर एक साया बेकरार है अपना अक्स भरने को। शायद तुम्हें मालूम नहीं तेरी तलाश में बहारों के फूल महके हैं, बुलबुल चहके हैं। क्यों जर्द पत्तों के मौसम में गुम हो गई हो,

दोस्तों मिली जुली गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your reacts.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाईयां ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो JS कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर जोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे?

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vidastha. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं FM 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: तो बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد.

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू से गीत। गीत के बोल है रेशमी पाजेब की झनकार। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंद।

इसी के साथ लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से गीत। गीत के बोल हैं, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: जाए।
1: जी हाँ श्रोतो, आप सभी के नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म आसरा से गीत। गीत के बोल है नींद कभी रहती थी आंखों में। इस गीत को आवाज दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और साथ में ये हम सभी को नमस्कार भेज रहे हैं, हम सबकी ओर से आपको और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से, भेजने वाले श्रोता है रणधीर भांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रेशम की डोरी से गीत। गीत के बोल हैं बहना ने भाई की कलाई पे। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर ने। रणधीर भांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनराज। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

क्या? आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप भी किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। आपको लिखना होगा उस फिल्म का नाम, गीत के बोल और अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं और आपके सभी दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम जो उस गीत को सुनना चाहते हैं। आप ये जानकारी हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आप ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास एक फोन कॉल के माध्यम से आई है और ये कॉल हमारे पास आया है मंगत राम की ओर से, महेश नगर अम्बाला कैंट से। इनके साथ सुनने वाले श्रोता हैं वीरेन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मा से गीत। गीत के बोल है राज की बात कह दूं तो। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। आज हम कुछ संदेश देना चाहते हैं मंगत राम जी को। जानकारी हमें मिली है कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आप जल्दी से अच्छे हो जाएं और साथ ही आपको बहुत सारा प्यार और नेक ख्वाहिश है। आपकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में कुछ पंक्तियां आपके लिए। आपकी मुस्कान से ही सजता है ये मंच हमारा, आपके जल्द स्वस्थ होने का इंतजार है हमारा। हर दुख हर बीमारी अब दूर हो जाए, आपकी जिंदगी में फिर से खुशियों का सवेरा आए। अपना ख्याल रखें और आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: इसी के साथ एक और फरमाइश जो आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नुशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म चरस से गीत। गीत के बोल हैं आजा तेरी याद आई। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी, लता जी और आनंद बख्शी जी ने। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा गीत।
1: इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं और आपसे चाहेंगे अनुमति ताकि अगले प्रोग्राम को तैयार कर आपके साथ फिर रूबरू हो सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब अलग एंड से हमारी प्रसारण।

सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: थे दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी।
3: हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको तलाश रही है क्यों तेरी बेताब नजरें, खुद में झांक हम तेरी आंखों में दिखाई देंगे। ओ हां नमस्ते, ये तो मैं कहना भूल ही गया आपसे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। एक खास प्रोग्राम आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं। ये रेडियो वितस्ता का वितस्ता गीतमाला नामक प्रोग्राम है। शुरू करने जा रहे हैं हम संगीत का वो सफर जो कुछ समय के लिए आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंताएं और आपकी सब परेशानियों को आपके दिल और दिमाग से दूर कर देगा। और अगर कुछ रहेगा ना तो सिर्फ जहन में एक ही नाम, वितस्ता गीतमाला। और इसके साथ होंगी प्रज्ञा गोयल जी की शायरी, मेरी आवाज और रेडियो वितस्ता का साथ। रेडियो वितस्ता के इस विशेष कार्यक्रम से जिसका नाम है वितस्ता गीतमाला पार्ट टू। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। ना जाने कब हो गम की सहर, मेरे साथ चलो। मैं अकेले भटक न जाऊं कहीं, अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो। तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, मैं जानती हूं मगर मेरे साथ चलो। है तुझको नसीब सपनों का बसेरा, मैं मुसाफिर हूं उम्र भर, मेरे साथ चलो। अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो।

उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये सारा सामान भी उठ जाएगा, उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान भी उठ जाएगा, रह जाएगा यहां बस कुछ यादों का कारवां, सब मुझी से है ये गुमान भी उठ जाएगा, ये गुमान भी उठ जाएगा।

देखिए साहब, लोग किस तरह से किसी को भूलने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। एक कवियत्री ने अपनी कलम से क्या खूब इसका जिक्र किया है, और ये कवियत्री कोई और नहीं प्रज्ञा गोयल जी हैं। प्रज्ञा जी कहती हैं कि पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, भुला दिया है यह कहकर जिक्र दोहराती हूँ तेरा, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, एक करवट से सोती हूँ अब भी राह तकती हूँ, दिल के पिंजरे में प्रेम का पंछी संभाल रखा है, तू लौटेगा एक दिन अब भी ये वहम पाल रखा है, तू लौटेगा एक रोज अब भी ये वहम पाल रखा है।

गीत मेरे, जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले आना। गीत मेरे तेरा नाम जब गुनगुनाए तो चले आना, खुली आंखें ख्वाब तेरा दिखाएं तो चले आना। पत्तों की साए साए में जब तेरे कदमों की आहट हो, फूलों में भी तेरे सांसों की महक हो तो चले आना। ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, मेरे हर नासूर का मरहम हकीम मानते हैं तुझे। वक्त रुखसत की जो खबर मिले तो चले आना, गीत मेरे जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले आना।

अब देखिए, प्यार की जहां तक बात है, किसी को प्यार नहीं मिलता तो साहब किसी को दिलदार नहीं मिलता। इसलिए एक सुनहरी कलम से लिखा गया, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता। दुनिया भुला बैठे हैं इस चाहत में, वो दिलदार नहीं मिलता। मेरी शख्सियत को जमाने भर में खोजो मगर, मेरी शख्सियत को जमाने भर में खोजो मगर, मैं वो हस्ती हूँ जिसका किसी से भी किरदार नहीं मिलता। मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ के निकाली, मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ की निगाह लिए, जब आईना देखा तो खुद से बड़ा कोई गुनहगार नहीं मिलता। अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजाए, अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजा आए, मगर जब दर्द हमको होता है तो कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता, कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता।

0: कभी कभी
1: जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, बेचैन सांसें बस सुकून को ढूंढती हैं।

तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, कुछ सिसकियां कुछ अश्क बहाने निकले, आज फिर प्रेम से पढ़ा उनको, बंद संदूक से जो खत पुराने निकले। ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले। रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले।

गजल तू कहे तो मैं तेरे नाम लिखता जाऊं, तू अगर दिन को रात कहे तो मैं रात लिखता जाऊं, तू बेचैनी तू सकून तू खलिश और तू ही करार, तू बेचैनी तू सकून तू खलिश और तू ही करार, तू अगर कहे तो मैं तुझको ही उद्गार लिखता जाऊं, तू मेरे ख्वाबों में तसव्वुर में बात में रात में, तू अगर कहे तो मैं तुझी को सारी कायनात लिखता जाऊं, मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू, मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू, बस तेरा साथ बना रहे मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं, मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं।

0: हम प्रज्ञा गोयल जी की आवाज आपको सुनाते हैं। आप सुनिए प्रज्ञा गोयल जी की आवाज। तो ये हैं प्रसिद्ध कवियत्री प्रज्ञा गोयल।
1: नमस्कार, मैं प्रज्ञा गोयल मुजफ्फरनगर से रेडियो विश्वस्ता के सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मैं श्री भारत सपूरी जी एवं श्री नरेश शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी भावना जो रचनाओं के रूप में प्रकट होती हैं अपने गीतमाला कार्यक्रम में स्थान दिया। एक बार पुनः रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा।
0: वैसे तो कहते हैं कि किसी खास चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जब तक एक खास जुनून के लिए सब कुछ ना छोड़ा जाए ना, तब तक वो मकसद हासिल नहीं होता जिस मकसद के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। तो जिनकी शायरी आप सुन रहे थे ना इस कार्यक्रम के बीच में, प्रज्ञा गोयल जी, उन्होंने अपनी कलम के लिए, अपने शब्दों को एक मूर्त देने के लिए, अपने एहसासों को आप तक पहुंचाने के लिए सच मानिए बहुत कुछ छोड़ दिया।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता का ये विशेष कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला, पेश किया आरजे नरेश शर्मा ने। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का था। इसको रिकॉर्ड किया गया था स्टूडियो रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट में। आप लोग अपनी राय जरूर हमें दें हमारे मेल आईडी पे, जो है radiovitasta@gmail.com, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9416013010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती हैं

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अगर आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को मार्गदर्शन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर अपने बारे में हमें लिखें। हम आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में, ताकि आपकी बात को रिकॉर्ड किया जा सकता है और सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाया जा सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे कुछ विषय पर खास बातचीत करेंगे और साथ में बताएंगे कल के कार्यक्रमों का विवरण, और साथ में हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर पर, जहां पर आप अपनी फीडबैक, अपनी जानकारी हमें भेज सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जहां हर शाम आपके साथ हमने बांटी कुछ अपने ख्याल, कुछ आपकी बातें, कुछ गीत संगीत और कुछ सुकून के पल। अब वक्त आ गया है इस सफर को यहीं विराम देने का। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और खुशनुमा हमने बनाया होगा। दोस्तों, जाते जाते एक जरूरी विषय पर बात करेंगे, और हम अपने बुजुर्गों का ख्याल और सम्मान कितना करते हैं और हमें कितना करना चाहिए, आइए इस विषय पर बात करते हैं, जो बहुत ही संवेदनशील है और हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब इस समाज में जब रहते हैं, तो हर परिवार में एक बुजुर्ग होता है। अगर किसी परिवार में बुजुर्ग नहीं है, तो हमारे आसपास हमारे वृद्धजन रहते हैं। आइए उनके बारे में आज बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी उनके लिए क्या है। इसका जवाब निश्चित रूप से हां है। हमारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते हैं, वे अनुभव का वो खजाना होते हैं जो किताबों में नहीं मिलता। उन्होंने वो दौर देखा है, उन्होंने वो संघर्ष किया है, जिनकी वजह से आज हम एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी आज की पीढ़ी इस बात को सही मायने में समझती है या नहीं। सच कहें तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शहरीकरण और एकल परिवारों यानी न्यूक्लियर फैमिलीज के बढ़ते चलन के कारण नई पीढ़ी का बुजुर्ग के साथ जुड़ाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और साथ में कम होता जा रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया और अपनी दुनिया में मशगूल युवा पीढ़ी के पास अक्सर अपने दादा दादी, नाना नानी के पास, इवन माता पिता के पास बैठकर उनकी बातें सुनने का वक्त कम पड़ जाता है। लेकिन यह भी सच है कि जब जब इस पीढ़ी को सही मार्गदर्शन, संस्कार और मौका मिलता है, तब यह पीढ़ी बड़ी तेजी से अपनी सोच में बदलाव लाती भी है। आज कई युवा जागरूक होकर अपने बुजुर्गों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का ख्याल रखने लगे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है। अगर यह सोच और मजबूत हो और हर घर में बच्चों को यह सिखाया जाए कि बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसका असर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज और देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिस समाज में बुजुर्गों का आदर होता है, वहां पारिवारिक मूल्य मजबूत रहते हैं, अपराध और सामाजिक तनाव कम होते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी यही संस्कार आगे ले जाती है। एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक जड़ों में होती है, और बुजुर्गों का सम्मान उन्हीं जड़ों में से एक है। जब युवा शक्ति और बुजुर्गों का अनुभव साथ मिलकर चलते हैं, तो वो देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ता है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि अपने घर के बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके अनुभव से कुछ सीखेंगे। यही एक स्वस्थ, संस्कारी और मजबूत भारत की नींव रखेगा। जी हां दोस्तों, यह था आज का विषय, और आप सभी के लिए मैं लाता हूं 4 पंक्तियां, जो आज की पंक्तियां आप सभी के नाम, और वो ये हैं, वितस्ता के किनारे बहती है जो कहानी,
वितस्ता के किनारे बहती है जो कहानी, उसमें बसी है हर दिल की जुबानी। लहरों की तरह ये आवाज, लहरों की तरह ये आवाजें भी बहती रहेंगी, लहरों की तरह ये आवाजें भी बहती रहेंगी। रेडियो वितस्ता की यादें दिलों में रहती रहेंगी, रेडियो वितस्ता की यादें दिलों में रहती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज की पंक्तियां और आज का विषय। जल्दी से आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर संगीत का कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 2 होगा, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है, आप कल सुनेंगे एपिसोड 36 एक बहु ऐसी भी, यह होगा शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी एपिसोड 2। ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के अंतर्गत तैयार किया गया कार्यक्रम है, आप जरूर सुनिएगा यह कार्यक्रम और इसके बारे में आप अपना फीडबैक भी जरूर हमें भेजिएगा। आने वाले दिनों में इसका पुनः प्रसारण भी होगा। 10:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम फिल्मी किसे एपिसोड 7 चलती का नाम गाड़ी होगी फिल्म, पेश करेंगे राहुल अलियान। संगीत की सभा जारी रहेगी, 2 बजे आप सुनेंगे साइबर क्राइम अलर्ट एपिसोड 2 और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, पेश करेंगे नरेश शर्मा और कल की कड़ी होगी समर्पण। 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे और साथ में आप हमें फीडबैक भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये जो जानकारी मैं आप तक ले आया, इसको तैयार किया हमारी कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। आपका साथ और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं फिर एक नए प्रसारण के साथ, तब तक के लिए मुझे भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।